0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: अहिले बिहानको 9 बज्यो।
2: हजुरको रेडियो

बढ़ो। फ्रांस में डड़ेलो लगाए आरोप में 420 जना पकड़ाउ पकड़ाउ पर्ने में 166 जना नाबालिग। लीग्स कप को समूह चरण में मेस्सी बिना खेले इंटर मियामी मोन्टेरे संग पराजय। दिउँसो 12 बजे को नेपाल खबर सकियो। दिउँसो 3 बजे नेपाल खबर लिएर फेरि आउनेछौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौंमा 90 MHz र उज्यालोअनलाइन.com पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। शरीरलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त पानी पिउने गरौं। नमस्कार।